0: रात्रीचे 8 वाजलेत आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 FM. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
1: This hour is brought to you by
2: Sony Gifts, exclusive range of crockery, appliances and presentation articles. Sony Gifts, Shalimar, Nashik.
1: This hour is brought to you by
3: Vishwas Cooperative Bank.
4: Sanchayat Samruddhi.
5: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
6: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही. त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा. रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज.
7: दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम. दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में सुनेंगे चेहरे पर आधारित कुछ हिंदी गीत. चेहरा हर इंसान की पहली और मुख्य पहचान होता है. ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. इसलिए तो दोस्तों चेहरे को इतना महत्व दिया गया है. चेहरे के जरिए लोग खुशी, गुस्सा, उदासी जैसी भावनाएं जाहिर करते हैं. चेहरे की संरचना और कार्य केवल संवेदनाओं से संबंधित नहीं है, यह तो सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है.

दिल ने पुकार है। इस प्रोग्राम में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म कभी कभी से, गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत में पिरोया था खयाम ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास 90.8, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ और आज के प्रोग्राम में सुनेंगे कुछ चेहरे पर आधारित गीत। भगवान ने न जाने क्या जादू किया है पर एक चेहरा दूसरे जैसा नहीं बनाया। जितने इंसान उतने चेहरे, कुछ गोरे कुछ काले, कुछ गोल कुछ टेढ़े मेढ़े और न जाने क्या क्या, और कुछ हसीन चेहरे जो अपनी ओर खींच लेते हैं दुनिया को।

0: तुमने जवाब नहीं दिया।
1: यकीन नहीं आया
0: रेशमा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिंदगी में इतनी कमी का एहसास कभी नहीं हुआ। हां कह दो रेशमा, हां कह दो।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म धर्मात्मा से, गाया था किशोर कुमार ने, लिखा था इंदिवर ने और संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्त चेहरे के बारे में बातें हो रही है आज के दिल ने पुकारा में, आपने ट्यून किया है 90.8। चेहरे हसीन तो होते हैं पर दोस्तों बदसूरत किसे कहा जाए। हर कोई परी की तमन्ना रखता है लेकिन हर किसी को तो परी नहीं मिलती। लेकिन अपना हम सफर जैसा भी है वो हसीन है, यही मानकर चलती है ये दुनिया और चलना भी चाहिए, क्योंकि सूरत के पीछे जो सीरत है वही काम करती है। वरना बीवी या शौहर दिखने में बड़े प्यारे क्यों ना हो, बर्ताव में अगर कुछ प्यार नहीं तो क्या काम के।

दिल पुकारा में अभी आपने इज्जत फिल्म से गीत सुना जो गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा था साहिर लुधियानवी ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं दिल ने पुकारा, आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8। हर औरत चाहती है परियों सा चेहरा, लेकिन जैसा चेहरा मिले अपना जैसा भी चेहरा है वो अपने हाथ में नहीं है। जो चेहरा भगवान देता है बस वो अपना चेहरा है, उसे अपने कर्मों से सुंदर बनाना हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म करने वाला खूबसूरत लगने लगता है, बुरे कर्मों वाली परिया भी बदसूरत होती है।

पुकारा में अभी अपने पारस मणि फिल्म से गीत सुना गया था लता मंगेशकर और कमल बारोट ने लिखा था असद भोपाली ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जो अपना होता है वह सिर्फ सुंदर है इसलिए अपना नहीं होता, जो अपने दुख दर्द पहचाने संकट में मदद करे वही अपना बन सकता है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि दुनिया की नजर में अच्छे कर्मों से खूबसूरत बनना ही सबसे बड़ी बात है, भले ही भगवान ने कैसी भी सूरत दी हो।

0: दिल ने पुकारा आप सुन रहे हैं। दोस्तों अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म वक्त से, गाया था आशा भोंसले ने, लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत से सजाया था रवि ने। ऐसा कहता है कि मन में जो भी बातें होती है, जो भी विचार होते हैं, चेहरे पर तुरंत दिखाई देते हैं। मन साफ सुथरा रखने से ही चेहरे पर हंसी खुशी खिलती है। मन की आंखें होती है दोस्तों, जो दुनिया की तरफ बड़े ममता से देखती है, करुणा से देखती है। इन आंखों को सिर्फ प्रेमिका ही नहीं, हर किसी का चेहरा ममता भरा लगता है दोस्तों। तो आज इस प्रोग्राम में हमने चेहरे पर आधारित कुछ नगमे सुने। जितने व्यक्ति उतने चेहरे हैं, इन चेहरों के पीछे छुपा हुआ हर इंसान भगवान की बनाई हुई मूर्त है और इस इंसान के चेहरे पर गीतों के माध्यम से मुस्कुराहट खिलाना, यही तो रेडियो विश्वास का काम है। तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो विश्वास 90.8। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार, तब तक नमस्कार।
1: स्मार्ट लोकांची स्मार्ट निवड, विश्वास IMPS। क्षणात पैसे पाठवा, क्षणात आनंद पोहोचवा। विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड नाशिक, IMPS सेवा। क्षणात जलद व्यवहार, सुरक्षित व्यवहार, विश्वासाचा व्यवहार।
2: अजनबी या चित्रपटामधलं आनंद बक्षी यांचं गीत आता ऐकूयात। स्वर आहे किशोर कुमार आणि आशा भोसले यांचा, संगीत राहुल देवबर्मन।

0: गल है,
1: मैं समझता हूँ मेरी बोतल है।
0: हाँ बोतल है,
1: इसी बोतल से जाम भरने दे, महकशों को भी नाम करने दे,
0: महकशों को भी नाम।

0: आई कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। माई इस लॉटरी का नंबर मिला दे और जल्दी से बादल के नैया को पार लगा दे। अरे पांडु अभी तक मोतिया लॉटरी का रिजल्ट लेकर नहीं आई रे।
1: आती होगी गणपत भैया, तब तक माता जी का आशीर्वाद दे ले ले।
0: हाँ ले लो ले लो। जय जय जय जय जय जय जय जय हो महाकाल काली काली काली। दया

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

बड़ी डिफी कल्टी कल्टी डिफिकल्टी से मिलता है। तकीला नकीला अबहूबा लबालूबा दुम तक दुम

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।